संसार विच सुख मानन लई भेजिया सी, पर असी नाम दा स्वाद छड के रसा कसा विच फस गए, अहंकार विच फस के दुख पाए। ए दुख तेरे भेजे हुए नहीं, ए साडे अपने ही सहेड़े हुए।

बिना सिमरन तो तेरा जीवन किसे भी लेखे नहीं। सेवा और सिमरन तो बिना इस तरह जीवन है, कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलिया माने बाज बतारा। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ दे वेद व्यास कहंदे हन, त्रिग सेवा बिन हाथ पैर होर निफल करन।

आ मृतक शरीर पिया है। बाघ ने पहला आके इसनु सुंगिया, चला गया, फिर इसका मस्तक सुंगिया, हाथ सुंगे, कदम सुंगे, फिर वापस चला गया। जापदा सी कई दिना तो भूखा है, पर उसने अपनी खुराक वेख के इसनु भक्षण क्यों नहीं कीता? ता धन गुरु नानक पातशाह कहणगे, मर्दानिया आ कीर्तन दी रब्बी बाणी दी आवाज इसते कन्ना तक पहुंची है और इसका मन निर्मल हो गया, हिरदा स्वच्छ हो गया। इसने जिस मृतक शरीर नू सुंघया ना, इसलिए सुंघया कि इसने कोई चंगा कर्म भी कीता लेकिन कोई नहीं कीता। फिर मन विच आया, हो सकता है कदे अपने गुरु अगे इसने शीश निवाया होवे, शीश सुंघिया, हो सकता है इसने कदी सेवा करके अपने हाथ सफल कीते होन, हो सकता है कदी इसने कदम सतगुरां वल गए होन, गुरु वल गए होन, पर मर्दानिया इसने कदम सदा माड़े पासे जांदे ने। इसके हाथ सेवा तो बिना इसका मस्तक कदे गुरु दे चरणा ते नहीं चुकिया, जिस करके बग्याड़ नू ज्ञान हो गया कि जे मैं इस पुरुष दा मांस खा लिया तो मैं भी कुंभी नरक दा भागी बन जावांगा। सो प्यारी सात संगत, मनुष्या जन्म उन्हां दा ही सफल है जिन्हां ने भाई सेवा और सिमरन करके अपना जीवन बतीत किया। गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश करदे हन गोविंद भज।

जीवन आनंदमय हो गया। जिस जीवन नु कोई डर सी ना भाई कोई धन चुरा ना लवे, आज सुख दी नींद सौंदा है, हर वेले सिमरन करदा है। ते धन गुरु नानक पातशाह जी नु आके कहन लगा, महाराज हुण कोई होर सेवा बख्शो। ता गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने सूई दिती, आख्या भाई दुनी चंद आ साडी सूई रख लै अमान।

उपमा महा कलगीधर बादशाह कहंदे ने अकाल पुरख तू राजियां दा राजा तू सूरजां दा सूरज तू देवतियां दा देवता तेरी उपमा बड़ी महान है।

उड़ारी मारी कि मानो दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार चुफेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इन्हां सारियां दे विचकार बैठा है। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उड़ारी मारी एक अनुभव नगर जा पहुंचे। ऐसा नगर जिदे बड़े बड़े ऊंचे मकान ने, बड़े बड़े वटे महल बने हुए ने, पर ओ महल इटा गारे दे नहीं, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहद बने हुए ने। उस शहर नू बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी इस शहर के अंदर दाखिल होए हां। इस शहर बारे धन गुरु अर्जुन साहब

बड़े बड़े वड्डे महल ने पर इना महलां दे विच रहिंदा कौन है सिर्फ उस परमेश्वर दे प्यारे रहिंदे ने

दरवाजा खुलिया तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी महल दे विच दाखल होए हैं। कुछ आत्मक मंडलां वाले लोग बैठे ने, एक तख्त पोश है, उस महल का फर्श मानो हजारा तारे जड़े हुए ने, छत मानो लखा ही चंद्रमा जड़े हुए ने, ताकत पोश भी सूक्ष्म शैदा बने हैं। इस ताकत पोश से एक दिव्य मूर्ति विराजमान है, जिदे विच्चों करोड़ा सूरजां दी रोशनी निकल रही, पर ए रोशनी गर्मी नहीं देंदी, जीवन दान देंदी। ओ दिव्य मूर्ति जिदा कोई अंग नहीं, कोई रंग नहीं, पर फिर भी सब कुछ है। तेजस्वी पुरुष दे नाल दिव्य मूर्ति दे सामने असी भी होए हैं। तेजस्वी पुरुष ने सिर झुकाया, दिव्य मूर्ति विचू आवाज आई, हे प्यारे नौ जामी धार के और अनेक कष्ट सहार के, जो तैं दुखी सृष्टि पर परोपकार कीता, मेरी प्रसन्नता दा कारण बने है। हे प्यारे तू हुण मात लोक विच जा, देव मूर्ति कौन है जिन्नू आपां अकाल पुरख कहने है। तेजस्वी पुरुष दुष्ट दमन कलगी तर पातशाह जदू ए किया, ऐ दुष्ट दमन ऐ प्यारे तू हुण मात लोक विच जा, ते कलगी तर पातशाह आप कहंदे ने कि उस वक्त ए हुक्म सुन के ते साडा मन जिहड़ा सी ओ मात लोक विच आण नूं मन्निया नहीं, जिहा कि आप साहिब जी लिखते ने।

ज्यों त्यों प्रभाव को समझायो इम कह के लोक पठायो। मन नहीं मन रहा पर अकाल पुरख नहीं समझाया ता दुष्ट दमन जी कहंदे नहीं संसार विच अंधेरा बड़ा है अज्ञान दा बचन कीता ऐ प्यारे मैं तेरे विच चानना बन के रवांगा जिथे तू जाएगा अंधेरा दूर भज जाएगा ते नाले मैं तेनू अपना पुत्र बना के संसार विच भेज रहे हैं।

दुष्ट दमन जी उस बेबान विच बैठे ने, वो बेबान वापस इस अनुभव नगर बेगमपुरा शहर तो तुरे आ, जिन्हों आपा सचखंड भी कहने, जिथों तुरे आ सी हेमकुंट नाम दे पर्वत दे असी वापस आए, इथे आराम कीता है। इथो ए बेबान तुरिया किथे जा पहुंचे है? गुरु तेग बहादुर साहब दे महल, माता गुजरी जी दे दीवान खाने, अमृत वेले आत्मक मंडला वाले जीव स्वागत वास्ते पहला ही हाजिर सन, आरती उतारी जा रही, आनंद मंगल पढ़े जा रहे ने। आत्मक मंडला वाले खुश हो रहे ने। अचानक प्रकाश होया, हर पासे बनास्पति खिड़ गई, मानो आज दुनिया दा पार हरण वास्ते एक होर जोत प्रगट हो रही है। कुछ घड़ियां बाद हर पासे खबर फैल गई कि माता गुजरी जी के ग्रह एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, ते कलगी तरपातशाह आप लिखते ने कि साडा प्रकाश पटना साहब की धरती से होया। मुरपित पूरे

हेमकुंड पर्वत जिथे अज हजारां संगतां दर्शन करन वास्ते जांदियां ने, सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण वास्ते अगों आंदा है, अपनी गल दे नाल लगा लैंदा है अपने चरणा दे विच जगह दे दिंदा है। आओ भाई उस दुष्ट दमन दे तपो स्थान दे आपां भी दर्शन करिए, कीर्तन करिए सुनिए, हो सकता है कीर्तन सुनदे हैं साड़ी भी सुरत उडारी मारे ते उस शहर दे विच सानू भी जगह मिल जावे, साड़ा आया सफला हो जावे।

सियो रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए। Embrace love for Guru's Bani. When the Guru shows mercy, pain is destroyed.

कोई छे छे कर्म सत सत कर्म साधु ही साधु खलोते है, पिछे पिछे सेवक है साधु अगे अगे है। ते बाबा जी का जिहड़ा भवान है वो उन्हां दा चुकिया होया है। जिस वेले उस समय याद आता उस वेले ऐ लगता है भी किन्नी धरती हरियाबली है, से संत पे हरियाबले जिन्ना मेरा सतगुर देखा जाए। अखा उन्होंने दे विच भी जल जिहड़ा सी वह वगदा सी। भागां वाले उस वेले संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज उन्होंने कहा भी कहना तो सौखा भाई रोवो ना, ये तो अपने घर चलिया पर रोन बंद नहीं हुंदा, मैं की करा। किसी का भी उस वेले जिहड़ा सी मन ये नहीं सी कहिंदा भी मैं ना रोवां, जी करदा सी उसी उची भुवां मारा। किहो जिहा प्यार दा समां सी, ऐसे सतगुरु जी महाराज फरमाउंदे हन।

ਸਾਰੇ ਹੈ ਚਾਰ
गया जिसे मेरे चंद्रनाथ के पास का जो कर गया या मेरे मत किया अरुण मित्र किया तो क्या था फिर किया नारी सिद्धिया किया आओ बैठे मरदाने में तो किया क्या भाई तू कर रहा है इन्हें किया था कल का मीरा में तो पाई फिर दर्द है आज कितनी भर दी है इतनी खुशबुआ कि कृपा करो कहने लगा पता लिया ये सारी कृपा मेरे धन गुरु नानक की भक्त अगर कहने लगे मैं बताने सच नहीं बाबा ये जड़ी चीज के नीचे हो एडी वी जात अगर कहने लगे बता दिया एडिया प्यार वाली हो रहा इसे कह मेरे कह

नरक ठंडे ठार हो गए। तवत में ठांड बरताई, आनंद पए दुख नाठे पाई। ऐसा तो जनक राजे दे मौके होया है, पर होर कदे इंसान दे मौके नहीं होया। किन्ने जीव आउंदे हन, नरकां दी सजा भोगदे हन, सोचदा है, चंगी तरह वेखदा है कि केड़ा पुन कीता इसने, केड़ी कमाई कीती है, लेखा बार बार वेख रहा है, चंगी तरह ध्यान धरके वेख रहा है। जदों ना पता ना ना लग्या, भी समझ नहीं आई, फिर अरदास कीती है निरंकार, मेरी समझ तो एक गल अगे दी है, मैनू इस दी समझ नहीं आउंदी कि इहदे जान नाल नरकां दे जीवां नूं क्यों शांत आ रही, नरकां दी अग क्यों बुझ जांदी है। भांबड़ मचदे होए इकदम शांत हो जांदे हन। जदों इउं अरदास कीती मन जोड़ के, जाचना कीती, वाहिगुरु मैनूं समत बख्शो, सोझी बख्शो, आकाश बाणी होई धर्मराज तू लेखा कर रहा ना, लेखा के ने पाप कीते न, गुनाह कीते हन, पर तू ए नहीं वेख्या कि एदे हिरदे ते मेरा वासा है, इस गुरसिख दे हिरदे ते मेरा नाम बसदा है। फिर महाराज, जे नाम बसदा है ते पापां दा नाश, पापां दी सजा तां मिलनी है ना। धर्मराज चाहे पाप कीते जरूर हन पहले समय विच, पाप भी जरूर कीते हन, पर हुण मेरा नाम इहदे हिरदे विच वसदा है। जदों इह जांदा है ते मेरे हुक्म नाल, आग्या नाल मोले धार बारिश हो रही है, अपने आप नहीं, मेरे हुक्म नाल। अमृत बेला बोलिया बंबीहा, तां दर सुनी पकार, मेघे नो फरमान हो। भी अपने आप बदल बारिश नहीं करदे, हुक्म नाल चलदे हन। मेघे नो फरमान होआ ते बरसो कृपा तार, ए मेरी रहमत बरस रही है, मेरे हुक्म नाल सब कुछ हो रहा है। ते अरदास करिए गरीब नवाज, जिवें तुहाडे हुक्म नाल नरकां दे जीवां ते रहमत हो रही है ना, बारिश हो रही है, ते कृपा करो साडे ते भी, मेहर करो। कलयुग दे समय ऐसा जीवन इंसान दा भी है, नरकां दी सजा नूं भी बंदा दुखी हो रहा है, उस नालों भी मन नूं बेचैनी है। ताइयों क्या कबीर, कलयुग आ गया झड़ झड़ पैण अंगियार, जे संत ना आउंदे जगत विच ते जल मरता संसार। अंगियार ही है ना, दूजे नूं दूजा बुरा कहंदा, निंदा करदा, भैड़े बचन कहने, ऐसियां गल्लां करनियां, अगले दिल साड़ देना, कवचन कहने, प्यार ना बोलन तां जानदे ही नहीं ना। हुक्म तो ऐसा है कि मोह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार। भी ऐसा बचन करिए जिन सुन के अगले का भी मन च प्यार धारण करे, प्यार वाला मन बन जावे। तो कलयुग का समय है, दुनिया दुखी है, हर कोई जीव दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। ते संसार दुखी विच फिर छुटकारा किवें, बच किवें सकदे हैं? इको तरीका है, भी मन जोड़ के धन गुरु नानक सच्चे पातशाह

0: तेरे खंड सच्चे बैमन सच्चे तेरे नो सच्चे आकार सच्चे तेरे करण सब विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तो दाखिला करो सच्चे सब तान सच्चे सब दू
1: सच्ची तेरी सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे बाजा नानक सच्चे सच्ची जो मर्ज में सो कट कट महला पहला
2: वड्डी उड़ेगा वड्डा।

गज कबूला सतनाम शिव राज पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना आवे धर्म हालिया उथे सचो ही सच निबड़े तू वक्त दे जमालिया थाओ ना पावन कूड़ियार मुह काले दोष चालिया तेरे नाए रते सेजन गए हार गए सुठगण वालिया लिखना आवे धर्म बहालिया।

0: सतकर्ता श्लोक मलावेला विस्मानाथ विस्मात वेद विस्मात जी विस्मात वे विस्मात रूप विस्मारंग विस्मात नागे फिरे जन विस्मात पौन विस्मात पानी विस्मात अग्नि खेरे बिडान विस्मात अर्थी विस्मात खानी विस्मात साधक के प्राण
1: विस्मात स्नोक विस्मात विरोग विस्मात पुख विस्मात पो विस्मात शिफ्ट विस्मात सला विस्मात औजल विस्मात रा विस्मात नेड़े विस्मात भू विस्मात